0: स्वधर्मा, चल चल चुंगे स्वधर्मा,
1: संगे संगे घुमाओ तू हम संधर्मा,
2: संगे संगे घुमाओ नो हम संधर्मा।

0: भने पछि साइकल लिएर गयो।
1: साइकल लिएर जाँदा जमाना उहाँ मोटरसाइकलमा पुगिसकेछ। एउटा मोटरसाइकल किन्देऊ, बुहारी ल्याएर देखाइन्थ्यो
0: किन्देऊला।

0: पठाउनै बनाएर छोडिनि।
1: अब के त गाडी किन्नु पर्यो मैले तँलाई।
0: अब त्यो रफ्तारले भेट्टाउन सकिएला जस्तो छैन बा। अब सिधै हेलिकप्टर हान्ने
1: नापिस।
0: तिम्रो जस्तो जमाना रहेन बा। अहिले त मायामा पनि छक्का पनि आउन थालेछ।